दिनेश पोपट की भी बर्थडे है, वो लंदन वाले ही हैं, और कहा है भरत गंगाराम ने कि उनके लिए मुकेश का गाना कोई अच्छा, उनसे पूछते हैं कि दिनेश पोपट सिड कप कैंट वाले कि वो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे। और पारो चोड़ा ने कॉल किया, कहते विकास हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव 100 मोर। फिर उन्होंने कहा कि दिनेश पोपट को भी मैं कहती हूँ कि हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव 150 मोर। पता नहीं दिनेश पोपट को क्यों 50 साल ज़्यादा मिल गए हैं, लेकिन ये दुआ की है दिल से पारो चोड़ा ने। कृष्ण सर कहते अभी अभी आपने मोहम्मद रफ़ी का बेहतरीन नगमा सुना दिया, राधी से तूने बांसुरी चुराई, कमाल किया है वाकई, बहुत ब्यूटीफुली सॉन्ग है, यू आर राइट। कृष्ण सरोय ने कहा कि बेटी बेटे फिल्म थी, सुनील दत्त पे फिल्माया गया था ये नगमा जो मोहम्मद रफ़ी का, ऑफकोर्स सुनील दत्त को तो सूट करती थी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। अब चिराग पटेल ने भी हैप्पी बर्थडे का दिनेश पोपट को और विकास को, दोनों को। और यहाँ पर हैं शोभना, कहते हैं कि ओके ठीक है शोभना, आई डू दैट, आई कांट बिलीव व्हाट यू आर सेइंग कि ये आपकी मम्मी है। ओके रसीला अर्शदीप का बता दिया पूरा सब कुछ, लेकिन रसीला फिलहाल तो मैं ये नहीं ना सुनाऊंगी, पहले मैंने जो लिखा है वो फिर आपका। ओके सना काना, हैप्पी बर्थडे टू दिनेश एंड विकास। और सैलीडार बहुत शुक्रिया आपका, ये मैसेज मैंने पहले भी इसी तरह का मैसेज पढ़ा है, थैंक यू फ्रॉम लंदन सैलीडार। प्यार अली भाटिया ने दोनों को विश किया है, विकास और दिनेश को हैप्पी बर्थडे। साथ एक और भी आया है मैसेज, ये किन का है, जिया अली, ये अच्छा ओके ठीक है, जिया अली ने भी किसी को कुछ कहा होगा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे विकास एंड दिनेश पोपट जी, नीला शेत की जानिब से। और दिनेश और शोभना, मैजिक स्प्रेड ऑल ओवर विद दिस प्रोग्राम, कीप इट अप एंड लेट मैजिक फ्लो फ्रीली। बहुत अच्छे दिनेश और शोभना। और जो कहा है एमएल विश्वकर्मा ने, वो पहले ये गाना सुनेंगे, शमसा कमल एक पाकिस्तानी गायिका है, उन्होंने ये गाया है जो कि पहले नूर जहां ने गाया था।

0: और समय अब चलते हैं अर्शदीप दंग, अर्शदीप हैं कौन, समय इन्होंने तारीख लिख दी है, कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में, अर्शदीप, मैं श्योर नहीं हूँ सेकंड नेम जो डी ए एन जी है वो किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है डंग ही होगा, ओके तो ये बने हैं यूके के पहले सिख पायलट, RAF रॉयल एयर फोर्स में काम करने वाले, समिन भर्ती किए गए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं उसकी वजह से तारीख बनेगी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद 81 साल बाद लुधियाना से गए जो हैं अर्शदीप, और यूके में जो इनका परिवार सेटल हुआ था, ये पायलट बन गए हैं रॉयल एयर फोर्स के, कभी कोई सिख नहीं बना इस तरह से, और समय दादा ने ख्वाब देखा था कि बेटे पायलट बनेंगे, लेकिन दादाजी तो चल बसे, बेटा पायलट ना बना, यानी अर्शदीप का जो जो उनके पिता थे वो नहीं बने, लेकिन अर्शदीप बन गए और सपना सच हो गया। मैथमेटिक्स और फिलॉसफी में ग्रेजुएट हैं अर्शदीप, और जेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहले ट्रेन हुए, तरबियत हासिल की, और फिर फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट पे तजुर्बा हासिल किया। क्या बात है, बहुत ही अच्छे, ये सिख कम्युनिटी के लिए बड़ी खुशखबरी है समिन, अर्शदीप डंग इन यूनाइटेड किंगडम। एमएल विश्वकर्मा, हैप्पीनेस इज फाउंड इन थ्री थिंग्स, लेटिंग गो ऑफ व्हाट वाज, एंजॉयिंग व्हाट इज, एंड हैविंग फेथ इन व्हाट विल बी। एमएल विश्वकर्मा बहुत अच्छे। रितु गुप्ता,
1: परवीन जी नमस्कार, हैप्पी बर्थडे टू विकास जी, मे गॉड ब्लेस हिम। परवीन जी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, तो मैं चाहती हूँ आप ये लिसनर और आप भी ये डिस्कस कीजिए। तो ये टॉपिक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग। रितु गुप्ता।
0: अच्छा, हियरिंग एंड लिसनिंग में क्या फर्क है, समिन आप बताएं, 07011106106 पर हियरिंग और लिसनिंग में क्या फर्क है, और बड़ा फर्क है, और कई बार समिन हम बात करते हुए अंग्रेजी में इन दोनों में गलती कर देते हैं, इन दोनों के इस्तेमाल में गलती कर देते हैं। सैलीडार ने दिनेश और विकास दोनों को हैप्पी बर्थडे कहा है, बहुत अच्छे, और अमीर अली राणा, विशिंग ऑल दोज आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे मे यू हैव मेनी मोर। परवीन जी, आई एम अ बिट अंडर द वेदर, आई डोंट नो हाउ द सेइंग गोज, इज इट स्टार्व अ कोल्ड और फीड द फीवर। ओके, वाह क्या बात है, कहती मुझे समझ नहीं आ रही कि कोल्ड को भूखा रखूं कि जो बुखार है उसको खाना दूं। अमीर अली राणा, गेट वेल सून। सोनल मोदा, दिनेश भाई, दिनेश पोपट को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, और यही कहा है रूपल ने भी, और देखो मैंने कहते हैं कि ये क्या बनाया था, ट्राई कलर बर्न, हाँ ट्राई कलर बनाया, तिरंगा, तिरंगे के रंगों को लेकर केक सा बनाया हुआ है कि ये क्या है, मुझे नहीं पता कि ये केक है कि मिठाई है किसी तरह की। बहुत अच्छा किया आपने तीन रंगों का। मिस हैप्पी बर्थडे टू मनहर पटेल ने कहा है टू दिनेश पोपट और विकास दोनों को, मैं उनके लिए गुड हेल्थ की दुआ करूंगा। शैलेश और शीला, और टुडे इन हिस्ट्री थोड़ी देर के बाद, पहले ब्रेक लेते हैं, फिर यासर ने जो भेजा वो पढ़कर सुना।
2: सेलिब्रेटिंग योर फेवरेट ओकेशन, ईस्ट एफएम,
3: केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स,
2: एशियन मिक्स, ईस्ट ईस्ट एफएम, केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स,
4: the spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
5: Join S3 Education Visa Talk at Park Keen by Radisson Westlands for expert visa guidance. Can't attend? Join our webinar on 11th August for further support. To access 2026 University Placement Support, visit our Westlands or Ridgeway offices today or call 0750-594-444.

0: अश्विन दोषी जी, अश्विन पुराने जमाने का क्या मधुर
1: गीत। की फिल्म थी, फिल्म का नाम था मिस मेरी।
0: मिस मेरी, ओके।
1: यस, ये थी फिल्म एवीएम स्टूडियोज चेन्नई मद्रास से आई थी।
0: अच्छा, ओके।
1: यस, एवीएम स्टूडियो जेमिनी ये सब वेरी प्रोमिनेंट स्टूडियोज थे, जब भी वो साउथ इंडियन फिल्म बनाते थे और हिंदी फिल्म भी बनाते थे।
0: ओके, कहते बड़े बड़े हाई स्टैंडर्ड की फिल्में होती थी।
1: यस, और सभी वेरी मच प्रवीण जी, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई था।
0: राइट,
1: अरे जो जो फिल्म बनी सभी हिट हुई।
0: अच्छा,
1: ये भी मेरी भी, यस वेरी मच। जिसमें मिक्स था प्रवीण जी, फ्रॉम बॉलीवुड देर वर बीना कुमारी एंड किशोर कुमार, एंड फ्रॉम साउथ इंडिया जमिनी गणेशन एंड जमुना।
0: क्या बात है, फोर ऑफ देम। अच्छा,
1: एंड ओम प्रकाश, एंड म्यूजिक था हेमंत कुमार का, और गीत सभी लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी फिल्म होगी।
1: यस, वेरी वेरी नाइस मूवी, वेरी क्लीन मूवी, एंड किशोर कुमार से वजह से थोड़ी कॉमेडी भी थी।
0: ओके,
1: एंड हिट हुई।
0: ओफ अल्लाह, इमेजिन। काश काश अश्विन ये फिल्में हम एक बार फिर उसी तरह से देख पाए जिस तरह सिनेमा घरों में पहली बार देखी थी, है ना। वो मुमकिन भी है लेकिन कोई करता ही नहीं है।
1: अभी सिनेमा घर में अभी
0: सिनेमा ही बंद हो गया।
1: और अभी तो आपको देखना है तो घर पे आप देख सकते हैं। बस अभी, और अभी
0: मजा ही नहीं रहा,
1: दूसरा कोई चारा नहीं है।
0: राइट,
1: लेकिन मैंने तो देखी है और रियली
0: अच्छा, यू एंजॉयड इट।
1: यस, एंजॉयड इट, एंड दैट्स व्हाई आई तो ये गाना बजा तो मैंने
0: वेरी
1: सोचा कि आपके साथ बात करें।
0: बहुत अच्छे, सो ग्रेटफुल।
1: या परवीन जी, आई वुड लाइक टू विश हैप्पी बर्थडे टू विकास एंड दिकाश, दिनेश एंड विकास, बोथ ऑफ देम।
0: बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: अच्छा, आज तो दोनों ऑगस्ट बॉयज हैं, दिनेश और विकास, और यासर ने भी उनको विश किया, चिराग पटेल, आई एम नॉट श्योर। आपने कहा टुडे इन हिस्ट्री, ऑन दिस डे इन 1945 प्रेसिडेंट सुकार्नो डिक्लेयर्ड इंडोनेशियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम नेदरलैंड्स। जी, सुकार्नो, ओके। 99 अ मैसिव 7.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्रक टर्की इज़मित, near Izmit. At least 18,000 people died and 48,000 people injured during the earthquake and 5,840 missing. Matlab missing bhi to mari gaye hue na. Oof, the damage was estimated at between $12 billion and $20 billion. Ye Turkey mein kehte hain bhukam aaya 7.4, lekin या सर अभी तो 7.7 का आया है इंडोनेशिया में, जो हालिया हैं वो तो 7.7 के आ रहे हैं। खैर, थैंक यू सो मच रसीला, हैप्पी बर्थडे। आपने कहा दिनेश को भी कहा है सना। हियरिंग इज द पैसिव फिजिकल एबिलिटी, लिसनिंग इज द एक्टिव एफर्ट टू अंडरस्टैंड। समय ये सना काना ने बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन भेजी है डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग इज पैसिव फिजिकल एबिलिटी, ओके। वो आप कुछ सुन रहे हैं ध्यान से नहीं, पर सुनाई दे रहा है। लिसनिंग इज द एक्टिव एफर्ट, लिसन जैसे आप लिसन करते हैं, आप कोशिश करके उसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बेमिसाल अंदाज को आप एक्टिवली लिसन करते हैं, सुनते हैं और देखते हैं कि क्या किसने कहा, फिर कुछ चीज़ें दिमाग में रख लेते हैं, वो उसको कहते हैं लिसनिंग। भरत गंगाराम, हियरिंग एक फिजिकल और ऑटोमेटिक प्रोसेस है, या जब कुछ होगा, धमाका होगा, आपके कानों में जाएगा, आप सुनेंगे, लेकिन जिसमें आवाज़ सिर्फ हमारे कानों तक आती है, जबकि लिसनिंग मीन्स एक्टिव और कॉन्शियस प्रोसेस, जिसमें हम कानों से सुनी हुई आवाज पर ध्यान देते हैं, वो लिसनिंग होता है और उसका मतलब समझते हैं। बिल्कुल भरत गंगाराम, ये आपके लिखने से पहले ही मैंने कह दिया था। और ये था ऋतु के सवाल का जवाब, भरत गंगाराम ने लिखा है। चिराग पटेल, आपने कहा है हियरिंग इज इनवॉलंटरी, आप चाहें ना चाहें आपको आपको सुनाई देगा। लिसनिंग इज अ वॉलंटरी चॉइस, जब आप लिसन करते हैं आप ध्यान से सुनते हैं किसी चीज को। हियरिंग यूजेज ओनली द ईयर्स, लिसनिंग एंगेजेस द ब्रेन एंड माइंड, व्हाट अ डिफरेंस। कहते हैं अगर है हियर करना तो वो तो सिर्फ कान ही उसमें होते हैं मुतहरिक, लेकिन जब आप लिसन करते हैं तो आपका दिमाग और मन होते हैं इसमें एक्टिव। हियरिंग टेक्स नो कॉन्सेंट्रेशन, लिसनिंग रिक्वायर्स फोकस एंड इंटेंट। कॉन्सेंट्रेट, ध्यान आपका हियरिंग में ना भी हो लिसनिंग में होता है। हियरिंग जस्ट रजिस्टर्स नॉइज, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंड्स द मैसेज। चिराग पटेल, वंडरफुल।

0: और समय ज्योति फ्रॉम रुईरू ने कहा है क्या कहा है कहती हैं कि प्रवीण जी 10 बज गए हम तैयार हैं आज सोमवार है याद है जी इसीलिए मैंने एक धार्मिक आगे रखा है ट्रैक लेकिन जो आपने कहा है वो अभी नहीं मैंने ढूंढा सोमवार है तो कहते हैं शिव शंकर का दिन है तो नमो नमो है नमो नमो हे शंकरा भोलेनाथ शंकरा क्या बात है वो भी ढूंढ लूंगी लेकिन आज पहले वो दूसरा जो मैंने रखा था आपका हुक्म था मेरे दिमाग में यूसुफ बट बहुत शुक्रिया आप एंजॉय कर रहे हैं और बात किसके साथ करते हैं आइए देखते हैं कौन है
1: प्रवीण जी गुड मॉर्निंग सबको बहुत दिन के बाद बात करते हैं अभी हियरिंग का आपने बोला हियरिंग तो ऐसे ही सुनते हैं ध्यान मतलब खाली आवाज आता है वो हिसाब से बोलते हैं तो हियरिंग कहते हैं वो लिसनिंग है वो ध्यान से सुनते हैं जो बोलते हैं वो सब अंडरस्टैंड करते हैं ऐसे लिसनिंग का होता है दिनेश शाह
0: बिल्कुल सही कहा है आपने दिनेश शाह डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग कल्पना हियरिंग इज व्हाट हस्बैंड्स डू एंड लिसनिंग इज व्हाट वाइफ्स डू कल्पना वाकई जबीन हिरानी गुड मॉर्निंग प्रवीण जी टू ऑल द लिसनर्स इफ वी जज पीपल नोबडी इज आवर्स इफ वी अंडरस्टैंड पीपल एवरीवन इज आवर्स डिवेलप द हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड वील एक्सपीरियंस पीस एंड लव इन ऑल रिलेशनशिप्स अच्छा ठीक लग रहा है अब जो किसी ने कहा था कि अगर धार्मिक जो है कलाम उसकी आई तो किसी ने कहा था कि ये सुना दीजिएगा तूने रात गंवाई सोए

0: करें उनके लिए गाना. गाना तो जरा मुश्किल होगा 10 साल के बच्चे के लिए, लेकिन आपके लिए जरूर कभी ना कभी. भास्कर ने कहा है कि ये जो गाना भी आपने मिलन का सुना दिया, मुझे तो याद आ रहा है सफर जो कि 60 साल करीब पहले किया था. बॉम्बे से हम मुंबासा आ रहे थे और वो भी बहरी जहाज में, तो ये गाना सुनाई देता था जहाज में. जी हाँ बिल्कुल भास्कर, ये तो बहुत ही पुरानी मेमोरी आपने हमारे साथ शेयर की, गुड. और कल्पना कहती हैं ऑफ कोर्स इट्स द फिफ्थ डे ऑफ श्रवण मास व्हिच इज सावन, और नाग पंचमी है आज, अच्छा इसलिए ठीक है. और रितु गुप्ता ने जो कहा है हियरिंग और लिसनिंग का, वो हमने कर दिया. वो कहती हैं आर यू नॉट गोइंग टू एक्टिवेट आवर ब्रेन टुडे, ऑफ कोर्स आई एम, पर ये बात है कि इतनी आपकी बातें हो रही थी कि ये जो सवाल है मेरा समिन वो रह गया. अब ये भी मैंने आपको बताना था कि कानपुर के कपड़ों के एक स्टोर में खास ऑफर दिया गया. क्या ऑफर था कि 15 अगस्त की रात, 15th आफ्टर इंडिपेंडेंस, आई मीन 15 अगस्त जब हिंदुस्तान को का स्वतंत्र दिवस, सो 15 अगस्त की रात 12 से लेकर 12:16 तक जो भी इस दुकान में आकर खरीदी करेगा 16 रुपए का हर आइटम जो भी उस दुकान में रखा ना वो 16 रुपए में ले जाएगा. मतलब 15 अगस्त की रात 12:16 पर आए जो भी वो 16 रुपए का सारा आइटम उठा कर ले जाए. और कब तक ये ऑफर था? सिर्फ 16 का. जब वक्त आया समिन दरवाजे खोले तो हुजूम उमड़ आया, समंदर बह निकला शहरियों का. मुसीबत हो गई, कुछ भागने लगे, कुछ गिरने लगे, भगदड़ का डर हुआ, पुलिस को बुलाना पड़ा समिन, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑफर किसने दिया था. भीड़ को काबू तो पुलिस ने किया, लेकिन ये थे कोई आलम, रईस आलम जो कि माट आलम माट के मालिक थे, उन्होंने ये आइडिया उनको आया कि ये करें. समझ, आइडिया तो बहुत कामयाब रहा, सिर्फ ये है कि फिर वो डर है ना कि अगर भगदड़ मच जाती है तो जानी नुकसान भी हो सकता है. पर चलो लोगों ने फिर लिए होंगे आइटम्स, जब पुलिस चली गई तो 16 रुपए का आइटम लिया.
1: East FM, Kenya's premier Asian mix. No one plays more of the beats you dance to but East FM, Kenya's premier Asian mix. Imagine getting rewarded for the transaction fees you pay. With Airtel Money, every time you send money to any network, you get 50% back of your transaction fees into your cashback wallet. Buy electricity tokens and you'll get your units plus 50% cashback. And Airtel to Airtel, absolutely free. Why let transaction fees take your money when they can put that money back in your pocket with Airtel Money? Airtel Money. Download the My Airtel app or dial *334#. Back to Kenya's premier Asian mix. East FM. No one plays more of your Bollywood favorites. Gulabi saari ani lali lal lal. Oh my, kitno ki love story hai, kaisa riya tera. East FM. Kenya's premier Asian mix.

0: जी अश्विन, मुझे ये नाम भी फिल्म का अजीब सा लगता है।
1: मैं आपने आपको यही बोलने वाला था। अजीब बस शुक्रिया, क्या उसका मीनिंग क्या होता है? आई डोंट।
0: हाँ, अजीब बस शुक्रिया, अजीब बस धन्यवाद।
1: अच्छा, ओके,
0: पता नहीं क्या कहना चाहते हैं कि बंद करो बातें, बस करो, निकलो यहाँ से, या क्या है?
1: ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था पंडित जी।
0: ऑफ कोर्स,
1: ये 50s में। हाँ। ये फिल्म में गीता बाली थी और सुरेश था।
0: अच्छा,
1: और सुरेश तो अभी कोई इसका नाम तो अभी
0: कोई याद ही नहीं करता,
1: लेकिन गीता बाली की एक्टिंग अच्छी थी। मैंने ये फिल्म देखी नहीं थी।
0: हाँ।
1: लेकिन मैंने पता था कि हिट हुई थी।
0: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स।
1: अच्छा, और म्यूजिक रोशन का था।
0: हाँ।
1: और ये गाना फरूख कैजर ने लिखा था। फरूख कैजर अभी थे एक शायर।
0: हाँ।
1: लेकिन इतने पॉपुलर नहीं थे प्रसन्न जी।
0: अच्छा, फरूख कैजर, मैंने नहीं सुना हुआ,
1: लेकिन ये गाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा,
1: और या और क्वाइट पॉपुलर हुआ था।
0: क्या बात है, बहुत ही गाना मुझे याद है, सभी ने लिख लिया था अपनी अपनी डायरी
1: में। बहुत बहुत बहुत
0: जी,
1: सभी लोग गाते थे और क्वाइट क्वाइट पॉपुलर।
0: आपने जैसे कहा कि सुरेश थे, गीता बाली को सभी याद करते हैं, और बेचारे सुरेश,
1: सुरेश का तो नाम।
0: हाँ, बिल्कुल,
1: गीता बाली वाज अ वेरी टैलेंटेड
0: ट्रू सिंगर एंड एन एक्ट्रेस।
1: और शमी कपूर की वाइफ थी ना
0: पंडित जी? बिल्कुल,
1: इफ यू रिमेंबर,
0: राइट?
1: शी डाइड टू अर्ली, वेरी अर्ली, बट शी वाज क्वाइट अ नाइस पर्सन एंड अ पॉपुलर फिल्म स्टार।
0: स्टार, थैंक यू अश्विन। और आपको क्या कहना था? यही कहना था कि मिथुन चक्रवर्ती को कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में दावत ही नहीं दी गई। आपका कहना था मुझे मॉस्को फिल्म फेस्टिवल रशिया में निमंत्रित किया गया है। अच्छा, बाहर वाले आपको बुला रहे हैं और अपने आप को नहीं बुला रहे, मगर बंगाल में मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया। मैंने चंद फिल्में की हैं बंगाली में, फिर क्या हो सकता है, मैं बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ ना, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। समीन, वो मतलब के मिथुन चक्रवर्ती अब जेलर 2 में दिखेंगे। उन्होंने तन से सार्केस्टिकली कहा है कि हाँ, शायद मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ। खैर समीन, अब मैं आपको 4-5 नाम देना चाहती हूँ, 5। इन नामों को आप सुने गौर से और मुझे बताएं कि ये क्या हैं। पंचम पुरीवाला, दोराबजी एंड सन्स, मंबाली रॉयल फैक्ट्री, शेख ब्रदर्स गुवाहाटी और करीम्स, ये क्या हैं? और इनको हिस्ट्री में क्या कैसे हिस्ट्री के साथ कैसे जोड़ेंगे? क्या हैं ये सभी? 0701 106 106।

कमाल का नगमा था और मैंने जो आपको पूछा है आप कोशिश कर रहे हैं बताने की ये मल्टी जनरेशनल ये था ओके ठीक है सोनल और साथ रसीला आई है मे बी दे आर ऑल या रसीला यही था आंसर लेकिन आपको थोड़ा और डिटेल और उमर Enjoying the show in Dubai. Kya baat hai? Umar is much better aapki duaon ke saath. Umar aur ab chalte hain Dinesh Shah. They are all from the Vora community. No Dinesh, ye sare Vora nahi the. Mamta, these are all bilkul correct answer Mamta aapka. Aur Shobna aur Dinesh ne kaha hai ke ओके बजट फ्रेंडली या आपने तारीख बता दी

पंचम पुरी वाला, पूरी भाजी बेचते हैं, थाली भी है, टू एवरीवन फ्रॉम डेली वर्कर्स टू मिलियनेयर्स यूजिंग रेसिपीज पास डाउन थ्रू सिक्स जनरेशंस. और समय छह नस्लों से पंचम पुरी वाला का काम चल रहा है, बेचने का इनका कारोबार है. इतना पुराना, ये आज़ादी से पहले के हैं, तमाम जो मैंने आपको नाम दिए आज़ादी से पहले के हैं कारोबार.

क्या बात है, समझे। विकास ने आप सब का शुक्रिया अदा किया है, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा किया है, एक एक लिसनर का जिसने उनको विश किया। और रसीला कहती है जो पंचम पूरी वाला, आई यूज टू हैव लंच पूरी भाजी वहाँ जाकर, पंचम पूरी वाला के। हाँ हाँ, अच्छा सोनल मोदा आपने कहा इन हिस्ट्री पंचम दास शर्मा वॉक्ड ऑल द वे फ्रॉम आगरा टू बॉम्बे।

on foot before trains existed. He started a small food stall opposite what is now Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, originally serving a simple plate of 5 puris with potato or pumpkin bhaji. Kya baat hai puri wale ki, Pancham Das Sharma the aap. Aur Yasir, aapne kaha these are legendary eatery brands, historic in India, which were established long before the country gained independence in 1947. These establishments carry decades, even centuries of culinary heritage. Wo kehte hain jo khanon ka khazana tha, inke paas tha. समय कितने इस तरह से फिर भारतीयों ने कारोबार शुरू किया, कारोबार में इनका शौक उभरा वगैरह वगैरह बहुत मतलब के इसी तरह से फिर समय एक पूरी कौम कारोबारी बन गई और आज समय इंटरनेशनल कारोबार हो लोकल हो भारतीय माने जाते हैं अपने एक्यूमेंट के लिए. अच्छा एक फिर कवाली हो जाए सबके नाम.

0: अंजुला गोरसिया कहती है कि आज एक मियां बीवी की बर्थडे। मियां और बीवी दोनों एक दिन पैदा हुए हैं। जो मियां हैं वो 69 साल के हैं और बीवी 59। हस्बैंड 69, वाइफ 59। जो हस्बैंड है कहती है वो एक ज़माने में चाइल्ड आर्टिस्ट था। ऑफ कोर्स फिर कई फिल्में उन्होंने की थी और फिल्म शोले में अहमद का उन्होंने किरदार निभाया था। फिल्म शोले अहमद, क्या बात है। ओके, और वाइफ टेलीविजन सीरीज में काम करती हैं। तो समझिए कौन है हस्बैंड वाइफ टुगेदर। अहमद फिल्म शोले का आज अपना जन्मदिन मना रहा है और मंजुला गोरसिया कहते हैं नाम दे दें। 0701 106 106।
1: It's 12:18.
2: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read the Star.
3: All the favorite songs you grew up listening to. And the premiere mix of today. East FM, Kenya's premier Asian mix.

और सबसे पहले जो मैसेजेस आए हैं वो अलग हैं, कॉल जो आई है कृष्ण सरोए की है, कहते फिल्म शोले में ये लड़का अहमद मर जाता है, उसका जनाजा पड़ा है, मौलवी साहब आते हैं और फिर पूछते हैं, सब ब्यूटीफुल मेमोरेबल सीन जिसमें वो पूछते हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है, कमाल है, कहते यही एक्सप्रेशन उनकी इतनी फेमस हो गई, एक ही हंगल थे शायद, तो कहते हैं उसका नाम सचिन है। ओके, मैं देखती हूँ कि आपने क्या कहा है जिन्होंने जवाब दिया है। और यासर, आपने कहा है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि रीजेंट स्ट्रीट विक्ट्री हाउस में वीरा स्वामी ने खोला था 1926 में पहला इंडियन रेस्टोरेंट, 1926, वीरा स्वामी। It brought Mughlai and Hyderabadi royal recipes to the West, attracted famous artists. It survived World War II and earned a Michelin star in 2016. समझे, जो मिचेलिन स्टार होता है ये बढ़िया फूड ब्रांड्स को दिया जाता है, सबसे अच्छा खाना दुनिया में, ये आलमी है पुरस्कार। अच्छा, फिर लक्ष्मण सिंह आप हैं पहले जवाब देने वाले, सचिन और उसकी वाइफ की आज बर्थडे है। ओके, और डॉक्टर रजिंदर प्रसाद वो कहते हैं सचिन और सुप्रिया पिलगांवकर, ये हैं उनकी वाइफ सचिन की, इसका मतलब कृष्ण सरोए सचिन आप करेक्ट थे। और परवीन जी द आंसर इज सचिन पिलगांवकर, आशा भीमानी, ओके, और उसकी वाइफ सचिन एंड सुप्रिया बीना पटेल, आपने बता दिया है सुप्रिया पिलगांवकर। अल्ताफ समेजा, सचिन एंड सुप्रिया, क्या बात है, सबको पता है। दीपक वडगामा, सचिन पिलगांवकर और सुप्रिया। सना, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। और फातिमा कासम अली, सचिन और सुप्रिया पिलगांवकर, बहुत खूब। सोनल मोदा, आपका बिल्कुल करेक्ट है, नीला शेत, राइट आंसर। और बिंदु फ्रॉम जयपुर, आपने नमस्कार सभी को कहा है और उनका नाम भी करेक्ट दिया है। यासर, आपने भी, आपने कहा है कि जो सचिन है ही वॉज बॉर्न इन 57, 17th August एंड सुप्रिया ऑन द 16th ऑफ August, सो आज एक दिन तो नहीं वो पैदा हुए, एक दिन का फ़र्क है। समय जब एक दिन का फ़र्क होता है ना तो लोग एक ही बना लेते हैं, राइट, पर फ़र्क होना चाहिए। बेमिसाल अंदाज थेरेपी इज बेटर देन चिकन सूप, ग्रेट सॉन्ग्स एंड शो। अमीर अली राणा, आपका ह्यूमर बहुत अच्छा है और मतलब पता लग गया है आपको, मिल गया है आंसर, ये बड़ी अच्छी बात है।

0: और विकास हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत आपके शुक्र गुजार हैं। मैंने उनको बताया कि कितने लोगों ने उनको याद किया है।
1: थैंक यू प्रवीण जी फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स एंड विशेस एंड टू ऑल द लिसनर्स दैट हैव विश्ड मी। थैंक यू वेरी मच, इट मींस अ लॉट टू मी एंड आई अप्रिशिएट यू ऑल। स्टिल समथिंग टू लर्न फ्रॉम प्रवीण जी, थैंक यू।
0: और ये मतलब हुआ कि विकास की बर्थडे को आपने याद रखना है, जब आएगी अगले साल फिर से आप मनाएंगे। ही इज सो हैप्पी। अब समय आगे बढ़ते हैं एक गाना, लेकिन इससे पहले मेरे सामने कुछ मैंने रखा हुआ था, वक्त तो नहीं था तब कहने का, लेकिन अब कह देती हूँ समय कि इंडिया और नेपाल की सरहद, इंडिया और नेपाल के दरमियान जो सीमा है 1816 में तय हुई थी कि ये है नेपाल और ये है इंडिया, सगौली ट्रीटी के तहत। सगौली कहते हैं, मेरे ख्याल है सुगौली, मगर आज तक भारत का नेपाल के साथ तनाज़ा ही है। बहुत वो नहीं मानते कि ये लाइन जो है ये इंसाफ पसंदी से बनी थी ये सीमा। नेपाल के पास थे कागजात ट्रीटी के, तो नेपाल कहता है ये हमारा इलाका है, तीन इलाके, इंडिया कहता है ये हमारा, तो कागजात तो नेपाल के पास थे। अब वो कहते हैं कि निकालो और देखें हम, लेकिन वो कहते हैं कि हम क्या करें, ये ना मिल नहीं रहे कागजात, वो ट्रीटी का जो ओरिजिनल है ना कॉपी समिन, वो मिल नहीं रही। कहते हैं हमने और मान भी लिया है, कहते हमने म्यूजियम्स छान मारे हैं, हम आर्काइव्स में गए हैं, हम मंत्रालयों में मिनिस्ट्रीज में जाके देखा है, सब छान मारे, लेकिन वो जो ट्रीटी थी सुगौली ट्रीटी बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, वो मिली नहीं रही, क्या करें।

ये था कोरस कमाल का कोरस। और सामिन हम तो कितनों को महजबी कहते हैं, ये एक शायर है उन्होंने लिखा है, हम तो कितनों को महजबी कहते हैं, यानी जो भी कोई आया सामने, यू आर ब्यूटीफुल है ना, तो कहते हैं हम तो कितनों को महजबी कहते हैं, डैश हैं इसलिए नहीं कहते, डैश हैं इसलिए नहीं कहते। तो ये क्या हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि कोई हैं। अच्छा आप पहले सोचिएगा कि क्या एक लफ्ज़ क्या हो सकता है, हम तो कितनों को महजबी कहते हैं, डैश हैं इसलिए नहीं कहते, वरना तो कहते रहते हैं, पर अब कुछ है इसलिए नहीं कहते, तो क्या हो सकता है। 07011061061 चंद मिनट बाकी हैं आपके पास।

0: अच्छा ये कहते हैं हम तो कितनों को महजबी कहते हैं खूबसूरत हैं इसलिए नहीं कहते नहीं दिस कैनॉट फिट कौन है खूबसूरत खैर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम तो कितनों को महजबी कहते तुम ना होते तो किसी को क्या कहते अच्छा लेकिन वो डिफरेंट है लाइन मैंने कहा डैश हैं इसलिए नहीं कहते ठीक है सोनल मोदा बिल्कुल करेक्ट इन्होंने गूगल किया है आई एम श्योर और एक और आई है ज्योति नहीं ज्योति वो मैंने एक धार्मिक सुना दिया था अब अगले मंडे को करेंगे क्योंकि मैंने ढूंढा भी है वो जय ओ शंकरा जी आपने कहा था ना कि शिव शंकर का दिन है राम का मैंने बजाया था एक दिन आपने मांगा था ये नमो नमो जो है ये मुझे सारा टाइम दे भरत गंगा राम बिल्कुल करेक्ट आंसर सोनल और भरत गंगा राम ने दोनों ने मुझे करेक्ट आंसर दे दिया
1: डू यू हैव अ कमेंट और कंप्लेंट अबाउट ईस्ट एफएम वन ऑफ आवर प्रोग्राम्स और अ सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम There are a number of ways you can make a complaint or comment. You can send us an email to complaints@radioafricagroup.co.ke or call us on 0711 046 000. Your complaint will be investigated and a response sent to you within 14 days. Just remember to keep a copy of all communications between you and us. We listen to you because you listen to us. East FM.

0: जुबन पे थी।
1: क्या मेहदी हसन के से कम नहीं थे समीन, ये थे हबीब वली मोहम्मद। अब देखते हैं, सोनल मोदा कहती हैं देखो मैंने कोई गूगल शुगल नहीं किया। ओके सॉरी, आपने कहा मैंने गुलजार साहब की गजल में सुना था। क्या बात है, बहुत अच्छे। और अब यहाँ पर लवली प्लेलिस्ट, रियली एंजॉयड। आंसर है आप हैं इसलिए नहीं कहते, ये कहा है फातिमा कासम अली, बिल्कुल सही। और सना काना नो, भरत गंगाराम, देखो परवीन जी हम इसलिए नहीं कहते, वो हो सकता है आप हैं इसलिए नहीं कहते, बिल्कुल यही है भरत गंगाराम। और आपने कहा हम आपको सुनते हैं ना इसलिए जवाब देते हैं, ऑफ कोर्स समन आप था वो फिल इन द ब्लैंक। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर।

बेमिसाल अंदाज का वक्त यहीं पे पूरा होता है, समय मैं चलती हूँ, आगे आ रहे हैं नीलूफर, दो गाने आपके लिए छोड़े रखती हूँ, ज़रूर सुनिएगा, और कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, और वो होगा मंगल का मुहावरा, करेंगे इंग्लिश के भी होंगे हिंदी के भी होंगे, तो फ़िलहाल तो इंतज़ार कीजिए नीलूफर का, मैं चलती हूँ।

0: सिर्फ दिल टूटा है सांस में, धड़कनों में रवानी अभी बाकी है। प्यार का किस्सा खत्म हो गया तो क्या, जिंदगी की कहानी अभी बाकी है।
1: ये दिल तोड़ के
2: No one plays more of your Bollywood face.